बापू रोवे मच गई फसल गुड़े पांच छे किले नाल चाचे दे सानू चप्पला हुण तक जुड़िया नहीं कित्थों लईए बैग बरसाचे दे सुपने भी आउण सलाबे नहीं साडे घर दियां छत्तां कच्चियां ने करजे विच डुबे हरफ दियां जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने अजे के

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: हाँ तो दोस्तों गल ऐदा है कि भाई मैं रात नूं बैठा सीगा मूड नूं वल देखी जांदे ते ओहदे विच मैं चन नूं देखिया ते मैं चन नूं देखिया तां ओहने मेरे नाल की गल्लां कीतीआं जिवें मैनूं ऐ लग्गिआ सुण के।

अपना फर्ज अदा कर गया, असि अपना फर्ज निभावांगे, तेरी रीत नू लैके चलांगे, तेरे वांगू अंडा करावांगे।

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा

देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

की लालच को जाने दो। मैंने गम देगा हार देगी, बचपन में बैठों की मार देगी, दुनिया देती गाली बस माई प्यार देगी, मदद के लिए पुकार खुशियों के लिए गुहार देगी, रिश्तों में दरार यारों से यार मार देगी, मैंने बेचैन अपनी सांस मरने के लिए आज देगी, एक मंजिल देगी फिर तलाश देगी, सपनों के बिना

0: नफरत में तो लेना कोई।
1: हिप हॉप बनी लाइफ, कपड़े दिए खाना दिया, फैंस के रूप में खजाना, जीने के लिए जमाना दिया, परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया। मैं हिप हॉप नहीं, कईयों ने दावा किया, मैंने हर तरीके का गाना दिया, नास के लेवल के साथ गाना किया। टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया, बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया।

0: आस हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Where cultures connect, CJMR 1320, the voice of the city.

तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

0: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
1: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
0: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देख रहा हूँ।

क्या हमारे किस्मत ने इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले, आवाज मिटा दे देश पर।

चढ़ेगी क्या। 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

का हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।